0: पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

साईं मुंहिंजा ज़बान मां मिठा ऐं वणंदड़ ॿोल ॿोलण संजीदा सुखन कढण ऐं नरम ऐं साहींदड़ ॻाल्हाओ ॻाल्हाईंदड़ खे मिठी ज़बान या ज़बान जी फज़ीलत चइजे थो। अहिड़ा मिठड़ा ॿोल मिठड़ी ज़बान मां ई निकिरंदा आहिनि। इन ई ज़बान में जादू खां बि वधीक असर थींदो आहे ऐं मुरलीअ खां बि वधीक मंडु, जंहिं सां इंसान जूं दिलियूं मुंडबियूं आहिनि ऐं अहिड़ी ज़बान जॾहिं बि बयानु कंदी आहे तॾहिं ॼण कुर्ब जा ककर बणजी सूरनि जी सिज खे वेड़े छॾींदा आहिनि ऐं मोहबत जा मींहं वसण शुरू कंदा आहिनि। ऐं मिठी ज़बान अहिड़ी ज़ंजीर आहे जेका इंसान खे कुर्ब जे कड़े में काबू करे छॾींदी आहे ऐं मिठी ज़बान दिल खे पाण ॾांहुं छिकियो वठे ऐं मिठी ज़बान बीमार लाइ दवा जो कम कंदी आहे।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

जी समय प्रोग्राम है रोशन सुबह रोशन सुबह प्रोग्राम मां बुद्ध पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क ता तमा दोस्तन जा कुछ नाला है जेके अवां तई पहुंचाईंदासी मोहम्मद अमीन मरी गुलाम अब्बास मरी हालेपुरा स्टॉप मीरपुर खास का सोहराब मंगरियो है नजर मोहम्मद मंगरियो गुलाब खान मंगरियो गोठ सचे डिनो मंगरियो लगे बकापुर खां उन सां गॾु आहे दर्द नज़ीर शेख झंडे मरी खां कुर्बान अली ख़ासि खेली इनायत अली ख़ासि खेली खालिक लाशारी मीरपुर ख़ासि खां भाग्यो खान शर आज़मदीन शर गोठ खां नाज़ फ़क़ीर मोहम्मद जलालाणी महबूब नाज़ जलालाणी आरज़ू असलम मुख़्तियार नाज़ जलालाणी गोठ फ़क़ीर ग़ुलाम सेन जलालाणी खां हाफिज़ लखीमीर ढिलो हाफिज़ सावल ढिलो शमीर ढिलो मोरे खां प्रोग्राम ॿुधनि पिया ॿाहिरनि जी वॾी महिरबानी ज़ोहेब कटबर ज़ैनलाब्दीन बिलावल कटबर ऐं नंढड़ी बिस्मा रहमत बुरमाले लाड़काणे खां अज़ीज़ सोलंगी भुटो सोलंगी मीरपुर ख़ासि खां मीरपुर ख़ासि खां ई मोहम्मद अज़ीज़ जरवार मोहम्मद वसीम चनेसर भेण आज़ाद भेण मोरे खां आसफली चाचड़ वासफली बुगटी मेहताब चाचड़ माहौटन खां मोहम्मद खान कुंभार वफ़ा जमालदीन कुंभार मोहम्मद अली कुंभार हालेपुटा स्टाफ मीरपुर ख़ासि खां मोहम्मद ताहिर लुंड ॻोठ वलीदाद लुंडो सेठारजा खां रमेश कुमार कोहली रामचंद बि असांजो प्रोग्राम ॿुधनि पिया ॿाहिरि जी महिरबानी नूरजहान जो कलाम आहे दोस्तनि जी नाम पिया कयूं।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: It's time to commercial break.
1: Zindagi guzaryo etmaad sa.
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
2: सुनते रहो GFM 90.4।

जीअं समेन प्रोग्राम रोशन सुबुह में कुझु नाला आहिनि जेके अवां ताईं पहुचींदा हलंदासीं। ज़ाकिर हुसैन चांडियो लाड़काणे खां, उन्हनि सां गॾु आहे मंज़ूर हुसैन खोसो, नादिर खोसो ऐं अली गौर खोसो, मोहम्मद हनीफ़ रिंद अली खान, सद्दाम हुसैन रिंद ॻोठ जीअंद खान रिंद जेकाबाद खां, फ़क़ीर महरम अली जतोई ॻोठ आगा खान जतोई खां, ऐं ॻोठ मोलिनो माशी लॻे वॾनि महरनि खां, ज़मीर हुसैन सोलंगी, मुख़्तियार अली, ज़हीर अब्बास सोलंगी ऐं वफ़ा हुसैन सोलंगी, ॻोठ कंगन खां गुलाब खान कुंभर, शोएब अली ऐं ग़ुलाम रसूल कुंभर, ॻोठ हसू जतोइन खां मोहम्मद मूसा जतोई, यार मोहम्मद ऐं नसरुल्ला जतोई, ॻोठ मोहम्मद कासिम चांडियो खां अली अकबर चांडियो, मोहसिन अहसन फहद अहद ऐं शादाब चांडियो, ॻोठ केहरनि खां मीर शरफ़दीन केहर, सैफुद्दीन बदरदीन केहर, नवीद अहमद ऐं शहाबद्दीन केहर, ॻोठ छुटो मक्सी लॻे कंगन खां सिकंदर अली मक्सी, अकबर खान मक्सी, ऐं यारमंद करोड़ा कॉलोनी लाड़काणे खां फौजी इरशाद महेसर, ऐं ॻोठ हरसा जी गढ़ी कोरकाणी खां सूमर फ़क़ीर कोरकाणी। दोस्तनि जी वॾी महिरबानी, ऐं प्रोग्राम जो आख़िरी नगमो अव्हां दोस्तनि जे नाम।

हा जी हा समय हिकिड़ो मिक्स कलाम ऐं मिक्स लाॾो गीत होमेरा जनावा जे आवाज़ ॿुधो थी। इन ई ते प्रोग्राम रोशन सुबुह जो वक़्तु पहुचे थो पंहिंजी पुॼाणी ते। पंहिंजे मेज़बान नेमतुल्ला जूण जो फेर ॾींदा इजाज़त अलाह निगाहबान।

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت.
2: اب آپ سنیں گے جی ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
3: वण ऐं भितियूं किरण जे नतीजे में बि नौतुनि समेत चार ॼणा फौज 20 ज़ख़्मी. फौतुनि में अब्दुल मजीद, मोहम्मद हमीर महर, वसमात खातून ऐं वसमात लाल खातून ज़ाल सजण ख़ासकेली शामिल. मोरो ऐं भर पासे तूफान सबबि सोलर प्लेटूं ऐं साइन बोर्ड किरण सबबि हिकु औरत समेत 5 ॼणा फौत थिया, 5 खां वधीक ज़ख़्मी. धारूशाह भरिसां भोरटी में तेज़ तूफान सबबि घर जी भित किरण सबबि फातिमा पवर दॿिजी फौत थी वई. मेयर ऐं भर पासे में सोलर प्लेट ऐं भितियूं किरण वारनि वाकियनि में हिकु ॼणो हयाती विञाए वेठो, 9 ॼणा ज़ख़्मी थिया. राधन वेझो ॻोठ बालिशाह में भित किरण ऐं सोलर प्लेट किरण सबबि हिकु ॼणो फौत, 2 ॼणा ज़ख़्मी थिया. नौशहरो फेरोज़ ज़िले में तूफान सबबि अंबनि जे बाग़नि खे बि वॾो नुक़सान पहुतो.

अमेरिकी सदर ईरान सां ॻाल्हियूं ख़तम थियण वारनि ख़बरुनि खे ग़लति ऐं गुमराह कदर करार ॾेई छॾियो। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त अमेरिका ऐं ईरान विच में ॻाल्हियूं मुसलसल जारी आहिनि। अॼु बि ॿिन्ही मुल्कनि विच में ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। ॻाल्हियुनि जे नतीजे बाबति फ़िलहाल कुझु नथो चई सघां। कंहिं न कंहिं तरीक़े सां वाइदे ताईं पहुचण जो वक़्तु अची वियो आहे।

बजट ते वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी जा ख़दशा खत्म करण में नाकाम गालियुनि जो बियों दौर अॼु थींदो। ज़रियनि मूजिबि इस्लामाबाद में थियल इजलास दौरान हुकूमती टीम पीपल्स पार्टी जा ख़दशा ख़तम न करे सघी। ॻाल्हि दौरान ॿिन्ही पार्टी जे अॻवाननि विच में इतफ़ाक़ न थियण सबबि इजलास बिना नतीजे ख़तम थियो। पीपल्स पार्टी हुकूमती टीम जी अॼु ॿीहर मुलाक़ात थियल।

खिबरो विझो नए नाला कैनाल में पुट के बचाईंदे पीओ बुटी वो गोला चारी गोठ खोड़ी वे बेहतर कर सबब निगर गुलसन जावरी कैनाल में किरो तो पीओ दरिया खान कैनाल में रही वो वाले दरिया खान जावरी पुट के बुढ़ण का बचाए पान बुरी वो वासन पारा संदस गोला जारी कैरपुर वेझो बुरी वेल निगरी ए नौजवान हथंदा आया जिले के मुख्तलिफ इलाक में हफ्ते अंदर बुरी वेल जंग अठ थी वो गोठ बेगमान के वे मीरवा कैनाल में बुरी वेल नौजवान अली रजा कुरेशी जो पंज ढी गुजरण बावजूद पतो न पो सठ वाह में बुरी वेल नव वरिंदी बिस्मा फुलपोटो भी पंज ढी गुजरण बावजूद हथना आई कैरपुर आसपास में हफ्ते अंदर मुख्तलिफ बहान इलाकन में अठ जना वेझंदे बुरी फोत थे घड़ी कैरो शहर में बुनियादी सहूलतों की खोट ए बिजली की बंदिश खिलाफ एहतजाजी कैंप कायम पनगुली चौक से शहर ने एहतजाज करने बाद कैंप कायम कर वरती शहरी अगवान चवण है शहर मसलन जो शिकार है बिजली भी ना है हुकूमत मसला हल करें।

0: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे।
1: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4
3: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
4: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 0331252576।
4: जी हा 2315525786
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद से, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

इसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून. वो लोग जो कि लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ बेटर, कुछ बड़ा, कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक. बहुत सारी बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए कि आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें.

0: तो मेरा फैन।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
4: आई। हाँ, गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252578 6।
4: जी हाँ, बुड़ी 331 5 5 786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: रफी जी वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आज ये रुखसार. आपको और मेरा साथ पूरे पूरे एक बजे तक का है और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं आप कॉल्स के थ्रू. तो कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488, जिसके ऊपर कॉल की जा सकती है, जो कि आप कर रहे हैं. हमारा सेगमेंट सुर लगाओ गाना सुनाओ, और सुर लगाओ गाना सुनाओ में हम लेंगे आप लोगों की बहुत सारी लाइव कॉल्स. सो फर्स्ट कॉलर इस सेगमेंट के चेक करेंगे जी कॉलर कहाँ से. हेलो
1: हेलो असलाम
0: वालेकुम. असलाम सागर भाई, कैसे ठीक ठाक.
1: खैरियत खैरियत.
0: अच्छा तो मुझे बताएं कि गाना कोई सुना रहे हैं आज आप हमें.
1: हाँ जी मैम, गाने के लिए तो कॉल की है.
0: तो सुनाए ना.
1: गोने ना मत खाओ, इन पिया मिल के आ, मेरे दिल की है आवाज बिछड़ा यार मिलेगा, मेरे दिल की है आवाज बिछड़ा यार मिलेगा, मुझे अपने रब से आज मेरा प्यार मिलेगा, मेरे दिल की है आवाज बिछड़ा यार मिलेगा.
0: ओके सागर भाई, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी नाइस. और जी इसके अलावा मुझे बताएं किसी को डेडिकेट करना है.
1: डेडिकेट हाँ दोस्त है मैम,
0: तो कर दे.
1: शौकत मीरानी और रमजान मोहम्मद रमजान कन्ना और मैं खुद प्रेमी सागर और मैम आप रुखसार मैम.
0: जल्दी जल्दी
1: बस बोल दिया.
0: ओके जी अल्लाह हाफिज. ये रहा गाना, इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे.

0: सक्कर FM 88
1: सक्कर की आवाज।
2: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ।
3: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक।
4: सचल की सर मस्त धरती
5: की आवाज।
6: जिंदगी गुजारियो सत लगी 300 मिनट ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क।

फरमाशा मामा मूसा बारी जो रते देरे खां असाए दोस्त अमाला सोनाणी मंसर रंड खां वडेरो नबी बख्श मला जुल्फकार मला याकूब खासकेली निर्वाग गोचारी का दोस्त बैठा ये फरमाशा आई डॉक्टर साहिब जी फरमाशा सर जानी भाई परेशी आज के पंजे मां बुखार रंगों जा जानी छो त चमचा मानू उखड़ान मत पान के वेढ़ाए जुदा करे छनी यो ख्याल कजे जेकन जुदा थी वनी भी न कैसा गाल न कजे परेशी छा पे

0: जाएंगे तो जी बहुत सारे कमेंट आप लोगों के एंड कमेंट मुझे रिसीव हुआ है राजा जुल्करनैन खियानी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आदाब एवरीवन वालेकुम अस्सलाम स्मार्ट किशोर कहते गुड मॉर्निंग सर कॉल लगा रहा हूँ लगाए और देखते हैं कि नेक्स्ट कॉर्नर कहाँ से हेलो
1: अस्सलाम वालेकुम वाजिद सर
0: वालेकुम अस्सलाम कौन बात कर रहे हैं
1: भाजी मेरे को आशिक हुसैन का बात करता हूँ
0: आशिक हुसैन भाई गाना सुनाएंगे
1: हाँ बिल्कुल सुनाऊंगा
0: सुना दे
1: जाने तमन्ना जाने अदा है सूरज की तेरी पलक पाए जाने तमन्ना जाने अदा है सूरज की तेरी आंखों से जलता है
0: सूरज भी तेरी आंखों से जलता है
1: जी जी
0: ये किसका गाना है सिंगर क्या है
1: इश्क मुर्शिद का
0: अरे
1: सॉन्ग है ना
0: भाई
1: का।
0: आपने तो गाना बिगाड़ दिया मुझे शक था पहले यही वाला गाना है आपने तो सारा बिगाड़ के रख दिया अब मैं सोचूं ये गाना कौन सा ये मैंने सुना क्यों नहीं है इतने साल हो गए मुझे रेडियो पे ये गाना क्यों नहीं सुना मैंने
1: आपकी जितनी उम्र है ना आपका गाना है आपने सुना है
0: मेरी जितनी उम्र है मेरी कितनी उम्र होगी अंदाजन क्या कितनी उम्र होगी
1: 28 उम्र होती आपकी
0: 28 साल मेरी उम्र होगी
1: इंशाल्लाह वही होगी हाँ,
0: अच्छा
1: बिल्कुल।
0: अच्छा इससे कम या ज्यादा नहीं हो सकती
1: नहीं ज्यादा आवाज बताता है ना इंसान का कौन कितनी की उसकी उम्र है
0: अच्छा तो मेरी आवाज बताती है कि मैं ज्यादा उम्र की नहीं हूँ
1: नहीं है ना उम्र की आवाज जिसकी क्वालिटी होती है ना
0: हाँ जी बिल्कुल सही कहा और कुछ कहेंगे भाई
1: हाँ बिल्कुल आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चलता है जिंदगी गुजार आप भी अच्छे तो प्रोग्राम बहुत अच्छा करता है सुनने वाले भी अच्छे हैं
0: बिल्कुल जी बिल्कुल बहुत अच्छा थैंक यू सो मच और इश्क मुर्शिद का ओएसटी सॉन्ग हम प्ले करेंगे और 03000113488 ये हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है जिसके ऊपर आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं तो जरूर कीजिए एंड हियर कम्स द सॉन्ग जिसकी मुझे रिक्वेस्ट की है और ये गाना स्टार्ट होते साथ ही जैसे ही बिलाल अब्बास चल के आ रहे होते हैं ना आ हा हा हा हा हा हा पता चल जाता है कोई अच्छा गाना चलेगा

0: कि यूं सुकून मिला जैसे रात का जलता दिया तुम ही हो।
1: ओके वेरी नाइस. और कुछ कहना है? ओके जी. और ये रहा आपका गाना. सुनिए, एंजॉय करेंगे और साथ में टंग ट्विस्टर भी बताएंगे.

0: बताओ कि जी आज का टंग ट्विस्टर है पेसे और टंग ट्विस्टर ये है कि परवीन ने पुरानी पेंसिल से प्यारी पेंटिंग बनाई. परवीन ने पुरानी पेंसिल से प्यारी पेंटिंग बनाई, ठीक है, ये कहना है. और ये कहने की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि अगला जो हमारा सेगमेंट होने वाला है जिसका नाम है बोलो तो माने, और बोलो तो माने में ये टंग ट्विस्टर आप लोग बोलेंगे, ठीक है जी. परवीन ने पुरानी पेंसिल से प्यारी पेंटिंग बनाई.
1: किसे पता.
0: गाना गाने के साथ न्यूज ब्रेक फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक, दोनों के बाद वापस आएंगे. स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है.

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: पाने बरसात के सबब तबाही मुख्तलिफ वाक़े हादसनि में 15 जणा फौत 50 खां वधीक ज़ख़्मी। गाज़ियाबाद जे भर पासे भितियूं ऐं छपरा किर सबब ॿिनि औरतुनि समेत 5 जणा हयाती विञाए वेठा, 10 खां वधीक ज़ख़्मी थिया। पोतिन में उमेर चनेसर महर समात राणी अफ़ज़ल पली हिकु औरत शामिल। नवाबशाह ऐं भर पासे तूफानी बरसात सबब वण ऐं भितियूं किरण जे नतीजे में ॿिनि औरतुनि समेत 5 जणा फौत 20 ज़ख़्मी। पोतिन में अब्दुल मजीद मोहम्मद हमीद महर असलम पवर मुस्तमात खातून ऐं मुस्तमात लाल खातून शामिल। मोरो ऐं भर पासे तूफान सबब सोलर प्लेट्स ऐं साइन बोर्ड किरण जे नतीजे में हिकु औरत समेत 2 ॼणा फौत थी विया, 5 खां वधीक ज़ख़्मी थिया। थारूशा भरसां भोरी में तेज़ तूफान सबब घर जी भिति किरण जे नतीजे में फातिमा पवर दब जी फौत थी वई। मेहर ऐं भर पासे सोलर प्लेट्स ऐं भिरियूं किरण वारनि वाकियनि में हिकु ॼणो हयाती विञाए वेठो, 9 ॼणा ज़ख़्मी थिया। राधड़ वेझो ॻोठ बालिशाह में भिति किरण ऐं सोलर प्लेट्स किरण सबब हिकु ॼणो फौत थी वियो, 2 ॼणा ज़ख़्मी थिया। रोशरो फेरो ज़िले में तूफान सबब अंबनि जे बाग़नि खे बि वॾो नुक़सान पहुतो।

अमेरिकी सदर ईरान सां ॻाल्हियूं ख़तम थियण वारनि ख़बरुनि खे ग़लति ऐं गुमराह क़दुरु करारे छॾियो। डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे अमेरिका ऐं ईरान विच में ॻाल्हियूं मुसलसल जारी आहिनि। अॼु बि ॿिन्ही मुल्कनि विच में ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। ॻाल्हियुनि जे नतीजे बाबति फ़िलहाल कुझु नथो चई सघां। कंहिं न कंहिं तरीक़े सां मुआदे ताईं पहुचण जो वक़्तु अची वियो आहे।

ईरान खान डील जे नाले ते खैरात छोकरे रहा हो। डेमोक्रेट सेनेटर कोरी बुकर जा सेनेट कमेटी में अमेरिकी परदेवी मार्को रूबियो का सख्त सवाल। सेनेटर कोरी बुकर चाहे तो अमेरिका आखिर छो ईरान से मुआदे तरफ वही रो है जो माजी में रद्द कर चुको है। वॉशिंगटन आखिर दबाव जो शिकार छो है। परदेही वजीर मार्को रूबियो चाहे तो अमेरिका ईरान का खैरात न घुरी रो है। दुख्य सफारती मरल है गालू जज्बात न पर टेक्निकल बुनियादन थन्दू।

इसराइल ॾखण लबनान ते हमलनि में तेज़ी आणे छॾी। रज़ाकार समेत टे शहरी शहीद, केतिरा ई ज़ख़्मी। लबनान इख़्तियार मूजिब सलेम वारे इलाइक़े में इसराइली फज़ाई हमले में हिकु रज़ाकार समेत 7 ॼणा शहीद थिया आहिनि। हमलनि जे नतीजे में केतिरियूं इमारतूं बि तबाह थी वियूं आहिनि।

वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां मुल्की सनअतकारनि ऐं सीरतकारनि जी मुलाक़ात, नए माली साल जे बजट ऐं मुआशी तरक़ीअ में तेज़ी ते मुशावरत। शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त सनअतकार पाकिस्तान जा सफ़ीर दुनिया में सुञाणप आहिनि। ॾुखियुनि हालतुनि में हुकूमत जो साथ ॾियण ते संदन थोरायता आहियूं। बजट में बि संदन मुशावरत शामिल हूंदी।

0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
1: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
2: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
2: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
1: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 0331252576।
2: जी हाँ बुड़ी 331 5 7 86
1: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: Very nice, very nice. Thank you. कुछ और कहेंगे?
1: नहीं, मैं और नहीं कहूँगा.
0: ओके
1: जी,
0: अल्लाह हाफिज.
1: अल्लाह हाफिज
0: जी. थैंक यू. 03000113488.

0: पांच मार्क के शो को कमेंट रीड कर रही हूँ, साथ साथ कहते हैं कि सिर्फ कल खाना खाते में ना जुबान दांतों में आ गई थी, इसलिए आज गाने में तकलीफ हो रही थी। अच्छा, ये मतलब कहते हैं ये एक मिथ है कि अगर खाना खाते में जुबान या फिर आपका गाल आपके ही दांतों के बीच आ जाए ना, तो या तो कोई आपकी बुराई कर रहा होता है या कोई आपको जो है ना बुरा भला कह रहा होता है। तो ये एक मिथ है और ऐसा कहा जाता है, मुझे नहीं पता और ऐसा होता है कि नहीं होता। मेरे ख्याल से जब खाना खाते हुए इंसान बहुत जल्दी में हो ना, तब ऐसा होता है। मतलब जब इंसान को बहुत ज्यादा भूख लगी हो ना, तो वो अपनी ही जबान अपने ही गाल भी खा जाता है। तो जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में कभी कभार ये होता है। और मिथ से जो है ना मेरा मतलब कि इतना ज्यादा है नहीं कि शायद ऐसा होता हो, लेकिन हाँ जल्दी खाने के मामले में हो जाता होगा। इस चीज पे जो है मतलब एक लॉजिकली बात है कि ये ऐसा होता होगा कि जल्दी खाने के चक्कर में आपकी जबान या आपका गाल आपकी ही दांतों के नीचे आ जाए, ये समझ में भी आता है। लेकिन कोई आपको बुरा भला कह रहा हो और आपकी जबान आपके दांतों के बीच आ जाए, ये समझ नहीं आई आज तक बात। अब कैसे पता चलेगा कि कौन है जो ऐसा कर रहा है और उसको कैसे पता है कि हम इस वक्त खाना खा रहे हैं। ये हमें क्यों नहीं पता चल पा रहा, ये उन्हें क्यों चल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट कॉलर इंजी लाइन पे, हेलो। वालेकुम अस्सलाम सर दर्द, क्या खा के बात कर रही हो?
1: कुछ भी नहीं।
0: कुछ भी नहीं, हेडफोन्स लगाए पहले तो ये बताओ।
1: नहीं, हेडफोन्स नहीं लगाए।
0: हेडफोन्स नहीं लगाए, पक्की बात है? देख लो
1: जी, पक्की बात है।
0: ओके, थोड़ा सा लाउडली बात करना सर दर्द, और मुझे बताओ टंग ट्विस्टर सुना है?
1: हाँ, उसे पहले वाले जानते नहीं सुन सके। टंग ट्विस्टर ये परवीन ने पुरानी पेंसिल से प्यारी पेंटिंग बनाई।
0: यस,
1: परवीन ने पुरानी पेंसिल से प्यारी पेंटिंग बनाई, परवीन ने पुरानी पेंसिल से प्यारी पेंटिंग बनाई, परवीन ने पुरानी पेंसिल से प्यारी पेंटिंग बनाई, परवीन ने पुरानी पेंसिल से प्यारी पेंटिंग बनाई, परवीन ने पुरानी पेंसिल से प्यारी पेंटिंग बनाई, परवीन ने पुरानी पेंसिल से प्यारी पेंटिंग बनाई, परवीन ने पुरानी पेंसिल से प्यारी पेंटिंग बनाई, परवीन ने पुरानी पेंसिल से प्यारी पेंटिंग बनाई, परवीन ने पुरानी पेंसिल से प्यारी पेंटिंग बनाई, परवीन ने पुरानी पेंसिल से प्यारी पेंटिंग बनाई, परवीन ने पुरानी पेंसिल से प्यारी पेंटिंग बनाई, परवीन ने पुरानी पेंसिल से प्यारी पेंटिंग बनाई, परवीन ने पुरानी पेंसिल से प्यारी पेंटिंग बनाई, परवीन ने पुरानी पेंसिल से प्यारी पेंटिंग बनाई, परवीन ने पुरानी पेंसिल से प्यारी पेंटिंग बनाई।
0: ओके जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और कुछ कहना है सर दर्द?
1: इस्मार किशोर भाई, जरा ख्याल से क्या याद करेगी?
0: इस्मार किशोर भाई,
1: मतलब ख्याल से क्या करेंगे, वरना गाना गाते हुए आपको तकलीफ होगी।
0: चले जी, बिल्कुल आपका मैसेज पहुंच गया, थैंक यू सो मच। अगला गाना प्ले कर रही हूँ सर दर्द, ठीक है? किसको डेडिकेट करना है?
1: हाँ,
0: अच्छा आपको करूँ मैं? अच्छा चले, ये गाना जो है ना, दिस सॉन्ग इज गोज टू द वन एंड ओनली सर दर्द, और ये रहा गाना, सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, छोटे से कमर्शियल ब्रेक, स्टे ट्यून्ड।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
4: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हा, 2315525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: काम करती है बाकी टाइम में आप?
1: यार लाइट चलती है ना, पर ऐसे साफ नहीं चलता.
0: हाँ साफ नहीं चलता. अच्छा वैसे वो टाइम भी ना खाना बनाने का और समथिंग लाइक इस तरीके से बहुत सारी काम करने का.
1: ऐसा डॉक्टर ही काम तो घर का नहीं करती, लेकिन शाम को सब जमा होते हैं ना, तो चाय वगैरह साथ में पीते हैं, सुबह वगैरह हो जाती है.
0: चले जबरदस्त जबरदस्त. और कुछ कहना है दुआ कवल?
1: हाँ बस यही पूछना था और आपसे बात करनी थी.
0: हो गई.
1: अच्छा गाने की तो उम्मीद नहीं यहाँ से.
0: गाने की उम्मीद? कौन सा गाना सुनना है?
1: नहीं मेरी तौबा.
0: तौबा की? अच्छा बताएं तो सही, क्या पता आपकी तौबा तौबा किसी काम आ जाए. अच्छा नहीं सुनना?
1: नहीं किसी से नहीं होती आपसे, नहीं किसी से नहीं.
0: चले अगला गाना मैं प्ले कर रही हूँ आपके लिए.
2: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक. खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन.
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज. जीए FM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज.
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते.
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
4: सुनते रहो GFM 90.4.
6: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
7: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल.
7: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन.
6: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा.
6: 0331252576.
7: जी हाँ बुड़ी 331 5 5 786
6: GFM रेडियो नेटवर्क
7: सिंध जो आवाज़.

0: شهره.
1: مير بودكاست
0: لارغانا.

0: वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और हमारे पास लास्ट में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट हैं और एक खूबसूरत सा गाना जो कि इस वक्त चल रहा है. साथ में हम लास्ट एंड लकी कॉलर लेंगे और देखते हैं कि आज का लास्ट एंड लकी कॉलर हमें क्या अच्छी बात बताता है. हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो मुझे लग रहा है इन्होंने कहीं और कॉल लगाई थी, गलती से मुझे लग गई है. कितनी गलत बात है. एक और ट्राई करेंगे नेक्स्ट. हेलो
1: वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: दीदार अली बलोच.
0: दीदार भाई, हमें ये बताएं कि

और जी लास्ट में जिन लोगों के कमेंट्स आए हैं, स्मार्ट किशोर आपके बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, अगर आप ये लिखने की जगह मुझे बता देते एग्जैक्टली आपने वो वाला कमेंट जो किया था उसमें क्या लिखा था तो ये ज्यादा अच्छा होता. अच्छा, अमार रमेश कुमार खत्री ने भी हमें कमेंट किया है. इसके अलावा राजा जुलकरनैन कियानी, आपके बहुत सारे कॉमेंट हैं और ये सारे कॉमेंट्स अभी तक के. और फाइनली इसी के साथ मेरे जाने का वक्त हुआ जाता है. इंशाल्लाह मेरी आपसे चिटचैट होगी अब शाम को 7 से लेकर 8 बजे तक, तो सुनना मत भूलिएगा. और इस वाले प्रोग्राम में आपसे मेरी चिटचैट होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो विद सेम आरजे. सुनना मत भूलिएगा. जिंदगी गुलजार है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. जाते जाते वही बात के ख्वाब देखने के लिए सोना जरूरी है और ख्वाब पूरे करने के लिए जागना उससे ज्यादा जरूरी हुआ करता है. लेट्स नो पर ठीक है. दिस इज मी आरजे रुखसार, साइंस आउट, टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह.

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: अपना शहर, अपना घर, लाड़काना
3: और लाड़काना की आवाज, GAFM 88.8।

0: अमेरिका ईरान जा हिकु भेरो ॿीहर हिकु ॿिए ते मिज़ाइल ऐं ड्रोन हमला ॿिन्ही मुल्कनि जा हिकु ॿिए ते अगराई ऐं जगमरी मुआदे जी भञकड़ी करण जा इल्ज़ाम। बाज़ारनि इनकलाब जी कुवैत ऐं बहरीन में अमेरिकी फौजी अॾनि सामूंडी जहाज़नि खे निशानो बणाइण जी दावा। बाज़ारनि इनकलाब चयो आहे त अरब अरबुज़ में ईरानी ऑयल टैंकर ते हमले जे जवाब में कार्रवाई कई। अमेरिका जे फिफ्थ फ्लीट हेडक्वार्टर एयर बेसिस खे निशानो बणायो। ईंदड़ जवाब वधीक सख़्त हूंदो। अमेरिकी सेंटकॉम चयो आहे त ईरान जा बैलिस्टिक मिज़ाइल ऐं ड्रोन हमला नाकाम बणाया विया आहिनि। जवाब कार्रवाई कंदे ईरानी कशम बेट में फौजी ठिकाननि खे निशानो बणायो। ईरानी मिज़ाइल निशाने ते नाहिन लॻा। कुवैत ते फायर कयल ॿ मिज़ाइल रस्ते में ई किरी पिया। बहरीन मथां फायर कयल टे मिज़ाइल अमेरिकी ऐं बहरीन फौज खे रहिया। अमेरिकी बहरी जहाज़नि ते टे ड्रोन हमला नाकाम बणाया विया।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
4: सिंध के दिल से निकली,
5: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
6: ढाडो सुठो
5: जीए एफएम 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो जी एफ एम 90.4।
7: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
8: तो पोए जी एफ एम 90.4 मातली बदीन एक एड़ो एफ एम रेडियो आए
7: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
8: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन।
7: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 0331252576।
8: जी हाँ, बुड़ी 331 5 5 7 86।
7: जीएफएम रेडियो नेटवर्क,
8: सिंध जो आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज GFM 90.4।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो?
5: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
5: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252586।
5: जी हाँ, 2315525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।

ओके जनाब, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन एश एंड स्किन ब्यूटी शो। हाँ जी, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं, खूबसूरत होते जा रहे हैं, खूबसूरती की दुनिया में कदम रखते जा रहे हैं और क्यों ना इस्तेमाल करें कि आपके पास इतने अच्छे प्रोडक्ट्स जो आ चुके हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी खूबसूरती हमेशा बरकरार रहे तो आपने वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है और वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को हर तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी कि आपको नाइट क्रीम मिल रही है, फेयरनेस क्रीम मिल रही है, साबुन मिल रहा है, फेस वॉश मिल रहा है, एक्ने ट्यूब मिल रहा है, लोशन मिल रहा है, हेयर रिमूवल लोशन मिल रहा है, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, हर तरह का प्रोडक्ट मौजूद है। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल जी इस्तेमाल कीजिए। एक और मजे की बात आप लोगों को बताती चलूं कि अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स फुल नेचुरल अज़ा से तैयार शुदा होने वाले प्रोडक्ट है, ऑल स्किन टाइप के लिए है, हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, हर कोई इस्तेमाल कर चुका है, हर कोई इस्तेमाल करना चाहता है। तो जल्दी से आप भी इस्तेमाल कीजिए, कहीं देर ना हो जाए और आपके एरिया में मिलना बंद हो जाए। भाई हम ये चाहते हैं कि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल होनी चाहिए, उसके लिए आपने नंबर्स के ऊपर रابطہ करना है, स्टार्ट करना है। रابطے जितने भी आप बढ़ाएंगे उतना ही आप लोगों का फायदा होगा, क्योंकि अक्सर कहते हैं ना कि अगर आप जितना भी रابطہ करेंगे नंबर के ऊपर तो आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर उतना जल्दी इतना तेजी से अवेलेबल होते जाएंगे। तो डायल कीजिए 03-15-799-059-5, ये नंबर आप डायल कीजिए। व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते जाइए। और यहाँ पर व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए मौजूद है, व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जो कि आपकी स्किन को फ्रेश बनाती है, फेयर बनाती है, ग्लोइंग बनाती है, ब्यूटीफुल बनाती है, क्योंकि इसके अंदर एड है जनाब मिल्क, एलोवेरा और एवोकाडो। ये तीनों चीजें मिलकर आप लोगों के लिए जो है ना व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम बनी है और व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम आप लोगों की स्किन को ब्यूटीफुल बना देगी। तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम एक नाइट क्रीम है, रात के टाइम इस्तेमाल कीजिए, लड़के लड़कियां सभी लगा सकते हैं, ऑल स्किन टाइप के लिए मजे कीजिए। उसके बाद आप इस्तेमाल करेंगे जी व्हाइट एश लवली क्रीम, और व्हाइट एश लवली क्रीम तो ये आप लोगों के लिए है, ये सारे लोगों के लिए, हर तरह का इंसान इसे इस्तेमाल कर सकता है, उम्र चाहे कितनी भी हो हर कोई इस्तेमाल करे, बच्चे बूढ़े जवान हर कोई व्हाइट एश लवली क्रीम का इस्तेमाल कर सकता है। और ये एक फेयरनेस क्रीम है, रेडियंट अल्ट्रा वाइटामिन से तैयार की गई है, इसके अंदर 30 वाइटामिन के कैप्सूल की गई है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हमारी स्किन के अंदर वाइटामिन की कमी हो चुकी है तो वो जो है ना वाइटामिन की कमी व्हाइट एश लवली क्रीम पूरी कर देगी। और जनाब यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, व्हाइट एश लवली क्रीम के अंदर आप लोगों को सनस्क्रीन भी मिल रही है, यानी कि अगर आपको फेयरनेस

चाहिए, लेकिन सनस्क्रीन आप अलग से ही लगाते हैं तो उसका खर्चा भी बच जाएगा, टाइम भी बच जाएगा. और ये तमाम तर चीजें जो है ना आप लोगों को एक ही प्रोडक्ट के अंदर मिल रही है, जिसका नाम है व्हाइट एज लवली क्रीम. तो व्हाइट एज लवली क्रीम इस्तेमाल कीजिए और खुद को लवली लवली बनाते रहिए. और उसके अलावा अगर आप एक्नी से शदीद वाला परेशान है तो डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी ट्यूब आपके लिए मौजूद है. डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी ट्यूब जो है ये फुल आयुर्वेदिक फार्मूले के साथ तैयार किया गया है. डॉक्टर की तस्दीक शुदा ये प्रोडक्ट्स हैं जनाब, आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा. और जब आप डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं तो जनाब ये आपके एक्नी से फाइट करता है, आपके चेहरे पर जो पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं, आपके चेहरे पर ब्लैक हेड्स हों, व्हाइट हेड्स हों, एक्नी मार्क्स हों या फिर निशानात कुछ ऐसे जो कि आप लोगों को चोट से लगे हैं, जलने का निशान है, ये तमाम निशानात भी खत्म हो जाते हैं गारंटी के साथ. क्योंकि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा. और डॉक्टर पिम्पल का जो एंटी एक्नी ट्यूब है ना, वैसे लगाने के तरीकेकार क्या है ये भी मैं आप लोगों को बताती चलूं. तो जब आप डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको लगाने के तरीकेकार बिल्कुल ये है कि आप रात के टाइम इस्तेमाल कीजिएगा. और रात के टाइम आप इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले आप अपना फेस वॉश कीजिएगा, या तो आप व्हाइट एज ब्यूटी साबुन लगाएं तो साबुन लगाइएगा. फेस वॉश लगाना चाहते हैं तो फेस वॉश लगाएंगे, अच्छे से अपना फेस क्लीन कीजिए, हाथों को अच्छे से क्लीन कीजिए. उसके बाद आप डॉक्टर पिम्पल का ट्यूब जो है ना वो अपने चेहरे पर अप्लाई करेंगे, जहां जहां पर निशानात है वहां पर लगाइए, जहां पर एक्नी है वहां पर लगाइए, जहां पर दाग है जो कि आप रिमूव करना चाहते हैं उन तमाम चीजों के ऊपर लगाइए, फिर सुकून से सो जाइए. सुबह उठकर अपना फेस वॉश करेंगे तो आप लोगों को फर्क नजर जो है ना वो आना स्टार्ट हो जाएगा. और अगर आप व्हाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आप दिन में रात में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फेस वॉश लाजमी किया करें. और व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो है ये आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये एक नाइट क्रीम है. तो ये तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप आराम से कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं, आराम से जाकर इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अपनी खूबसूरत सी स्किन को मजीद खूबसूरत बना सकते हैं. तो बिल्कुल जी नेचुरल असा से तैयार शुदा होने वाले प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती को देकर ही तैयार किए गए हैं. तो लास्ट में ट्राई करके देखिएगा, मजे आ जाएंगे आप लोगों को. और साथ ही साथ डायल करते जाइए 03-15-799-0595. और आज मैंने आप लोगों से प्रोग्राम में सवाल पूछा है कि आप मुझे बताएंगे क्या कभी आप लोगों ने घर के किसी मेंबर का प्रोडक्ट कोई चोरी चुपके लगाया हो और जब आपने लगा लिया तब वो प्रोडक्ट खुद ही बता रहा है कि हाँ जी मुझे इस इंसान ने लगाया, ये जो प्राणी है ना इसने मुझे लगाया है. तो बताइए क्या कभी ये आपके साथ भी हो चुका है. और इसी के साथ साथ आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं 8881 और फेसबुक पर. तो आ जाइए जी, आप लोगों का ही इंतजार है और आप लोगों के मैसेजेस जो इतने सारे जमा हो चुके हैं तो उनकी जाने बात आते हैं. और यहाँ पर फेसबुक वाले लोग पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें, ठीक है. अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया तो भाई आप बहुत बुरे हैं. तो लाइक और शेयर कर दें जल्दी से और आप अच्छे अच्छे बन जाएं. अच्छे तो वैसे आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम लगा कर भी हो सकते हैं. लगाइए व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम और आप पाले पाले हो जाइए. अच्छा, गाना भी लगाते हैं साथ साथ, गाना भी सुनेंगे और आपके मैसेजेस की जाने भी आते हैं. तो नजीर खोसो भाई हमें सुन रहे हैं बलूचिस्तान से, वेलकम जी आपको कहते हैं. नूर सिंतोनियो भाई हमें सुन रहे हैं बदीन से, आपको भी वेलकम हो गया. अमजद खोड़ो हमें सुन रहे हैं, अमजद खोड़ो कहते हैं सलाम बाजी. वालेकुम असलाम अदा. बाकी रात साई तूफान ई बारिश असा सा एड़ी कई जी बुरड़े कई बारन सची बुधा.

अच्छा आदिल कहती हैं सलाम अलैकुम, आप कैसी हैं? लाड़काना की शान, हमारी पहचान प्यारी आज सिद्रा मुस्कान। हम सादा तबीयत के साफ और सच्चे दिल के मालिक हैं साहेब। धोखेबाजों को माफ तो कर देते हैं पर दिल में वो पहले जैसा मकान नहीं देते, बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा चाचा खाले जुड़ी जो हमारी साथी, वालेकुम अस्सलाम। चाचा छाल तब खुश आयो। अच्छा इरफान कहते हैं सिस्टर सम देयर बिजी कांट अटेंड योर शो। चलें कोई बात नहीं चाचा, आप अपने कामों काजों से फ्री हो जाएं फिर हमारे प्रोग्राम में तसल्ली से आ जाएं। और उसके अलावा हिदायतुल्लाह कहते हैं सिद्रा क्या आपको मेरे कमेंट समझ आते हैं? बिल्कुल जी आते हैं, बहुत अच्छे से आते हैं, आप ऐसे ही किया करें जैसे आप करते हैं। अच्छा किशोर भाई कहते हैं हेलो हाय अदा की आयो खुशी हाओ खुशी मजे में स्मार्ट हाजिर आए अमां जी लबन लबन जी विच में दंद दिखाने लाए अल्लाह जाई उदा। अच्छा उनका अलावा हमारे साथ इकबाल लाशारी विलेज सोनो खा लाशारी मीरपुर खास से सुन रहे हैं। बाजी सिद्रा आपका शो नाइस है, शो तो नाइस आ पर मुख्य बुधाई मीरपुर खास में अवेलेबल थे वाइटेज प्रोडक्ट्स या अन्य गुण।

रोगिणी चाचा खालिद कहते हैं परफ्यूम लगा लेते हैं एक दूसरे का सिडो योर टॉपिक आंसर. परफ्यूम तो एक नॉर्मल सी चीज है, वो तो हर कोई लगाता है मुझे ये लगता है. और दर्दी दिल हमारे साथ मौजूद है. वालेकुम अस्सलाम कहती कैसी हो चंदा. मैं ठीक हूँ कहती, सोते हुए आपका इंतजार कर रही थी. ऐसा ना हो कि कहीं तुम सो ही जाओ तो आप बैठ कर मेरा इंतजार किया करें ठीक है. क्योंकि बड़ी नाजुक सूरत हाल है, समझ गए होंगे. अच्छा नूर हुसैन तुनियो भाई आपके यहाँ नेटवर्क का मसला है, चलें देखते हैं कोई हल निकालते हैं जी. और उनके अलावा हैं जी एस एन आर बाणी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सिदरा चाहला, उम्मीद त खुश हूंदा, शाद हूंदो, आबाद हूंदो, न याद हूंदो, नई विसरंदो. हाओ बिल्कुल सही था चओ. और किशोर भाई कहते हैं टॉपिक कडहिं कडहिं शैम्पू यूज़ कंदो आहियां पर हुन जी खुशबू ॿुधाए छॾियो त मूं हुन खे हुन जी शइ यूज़ कई आहे. हा बाबा इहो खुशबू जेका आहे न इहा ॾाढो कमु ख़राबु कंदी ऐं चोरी जेका न पकड़जी वेंदी आहे ईअं न. अच्छा दर्दे दिल कहती है मैं और मेरी सिस अलीजा शो सुन रही हैं तुम्हारा शो और गर्मी को एंजॉय करें. वैसे रात बारिश कहाँ कहाँ पर हुई थी बताइए जरा.

एसन कहते हैं टॉपिक बुधण का पोए असा एंट्री मारींदा हूं शो में खबर पवंदी याद है शो ना करीम भाई वैसे सही बात है ऐसे ही किया गया अच्छा पोस्ट को लाइक और शेयर करिए आप जल्दी जल्दी से टाइम जो है ना वो बड़ा तेजी से गुजरता जाता है और नोटिस दोनों भाई बहुत शुक्रिया जी व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर चुके हैं मुझे बताइए

तनाव जब आप वाइट हेड बढ़ते हैं की हिफाजत भी होना स्टार्ट हो जाती है जब आप इस तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं ना, जो कि आप लोगों की खूबसूरती को भी बढ़ाए और साथ साथ आपकी खूबसूरती की ब्यूटी मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आप ये सोचेंगे भाई हम तो नाइट क्रीम नहीं लगाते तो हम क्या करें, भाई आपके पास व्हाइट एज लवली क्रीम मौजूद है। आप ये सोचें कि हम तो साबुन नहीं लगाते फेस वॉश लगाते तो आपके लिए व्हाइट एज का फेस वॉश मौजूद है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम तो साबुन लगाते तो साबुन भी मौजूद है। और अगर आपके पास एक नहीं आ चुके हैं बहुत ज्यादा तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक नहीं ट्यूब भी मौजूद है। बहुत साबुन लगाते तो साबुन भी मौजूद है। और अगर आपके पास एक नहीं आ चुके हैं बहुत ज्यादा तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक नहीं ट्यूब भी मौजूद है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हर तरह का प्रोडक्ट है, बस आप दिल वडी कहो।

0: बावली इंटर भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून, वेलकम करते हैं प्यारे भाईजान को। और उसके साथ साथ हैं जी हिदायतुल्लाह, कहते हैं गर्मी की वजह से, हाँ जी गर्मी की वजह से सर पर कपड़ा ओढ़े जा रहा था। एक आंटी ने बोला परवीन तुम कब आई मायके से, तो आपने भी बस शुगल मिला लगा लेना था। अच्छा उन खां अलावा हजार खान जतोई भाई भी हमारे साथ मौजूद है। चाला हजार भाई तवाजो ठीक आयो न। अनवर भाई भी हमारे साथ है। अनवर भाई क्या कहते हैं?
1: Toujours pas retrouvé. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler.
0: Maman. अच्छा चौथा जिंदगी एक सफर आहे, हलंदा वणु था, कडे खिलंदा कडे चुप थी रहंदा वणु था। कुछ मानू दिल में घर करे वेंदा आहिन, आई कुछ रस्तन में ई विसरी वेंदा आहिन, पर सच्चो साथ ओ हुंदो आहे जेको हर हाल में गड हुंदो आहे। इया तो सही गाल आ। कश्यप भी हमारे साथ मौजूद है। हेलो कश्यप, अली अकबर बरोही भाई हमें सुन रहे हैं। अली अकबर बरोही भाई आपका भी वेलकम करते हैं जी। और ऐसन कहते हैं आज मुझी मोबाइल जी चार्जिंग खत्म आ, ता ब्रेक वठो आ मोबाइल चार्ज में लगाया। चलो ठीक है ठीक है, यो बिल्कुल सही है। और ये जी सुफियान अहमद भी हमारे साथ मौजूद है। सुफियान भाई कैसे हैं? ठीक ठाक मजे में। अच्छा सुफियान कहते हैं ये सॉन्ग कहाँ से निकाला है? यूट्यूब से। मैं ये सोच रही कि अगर यूट्यूब ना होता तो मेरी जिंदगी कैसी होती। ओके जी हजार भाई कहते हैं मैं आपका शो ख्वाब में एंजॉय कर रहा था, अचानक आंख खुली तो अदी आप सच्ची में आ गई थी। चले ये भी अच्छी बात है, आपके ख्वाबों में भी खैर से मेरा प्रोग्राम आ रहा है। वैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बताइए जरा मुझे ताकि ये पता चले कि जो आप ख्वाब देख रहे हैं वो किसी काम तो आ रहे हैं। अच्छा कम्बर में भी बारिश हुई थी, चलें ये अच्छी बात है। और मौसम जो है ना वो थोड़ा सा कूल कूल हो चुका है, थोड़ा सा मतलब ज्यादा नहीं थोड़ा सा, यानी थोड़ो फर्क पयो आहे। सो बिल्कुल तव्हां सां गॾु मौजूद आहे, असां तव्हां सां गॾु मौजूद पूरी पूरी टे बजे ताईं तव्हांजो असांजो साथ रहण वारो आहे। सोना तो तव्हां हिते ॿुधायो किथां खां ज्वाइन कयो पिया, कहिड़े सां गॾु मौजूद आहे, लॻायो पिया कोन वाइट एस प्रोडक्ट्स। टाइम थी वाइट न्यूज़ ब्रेक वठूं था, उन खां पोइ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हूंदा सफ़ा पितकड़ा। सो तव्हां काॾे न वञो, हिते वेठा हुजो, मां उहीअं वञी उहीअं मोटां थी। सो स्टे ट्यून, stay connected and keep listening White Age Anti-Skin Beauty Show sponsored by White Age Beauty Products Anti-Skin Beauty Products. Lagate jaiye khoobsurat hote jaiye, khoobsurti ko hello hi।

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: आप सुन रहे हैं GFM ETH Network, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

खास मटियारी सकरण मेरापुर मादली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपके साथ मौजूद हैं। आपकी सिद्रा प्रोग्राम सुन रहे हैं। व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। बिल्कुल जी, हम आ चुके हैं प्रोग्राम के ना दूसरे घंटे में। यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। और साथ ही साथ आप लोगों को हम ये भी बताते हैं कि जब आप इस्तेमाल करते हैं जनाब व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, तो इनके इस्तेमाल के बाद आप लोगों की खूबसूरती जो है वो कितनी ज्यादा बढ़ती है, तो उस बात के ऊपर जरा हम आते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इस्तेमाल नहीं करा है, तो अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इन चीजों को जरा आप सबसे पहले अपने दिमाग में रखा करें कि ये जो मैं जितने भी प्रोडक्ट्स आप लोगों को बताती हूँ ना, ये सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल अज़ा से तैयारशुदा होने वाले प्रोडक्ट्स हैं और ये ऑल स्किन टाइप के जो ना यूज करने वाले प्रोडक्ट होते हैं। ऑल स्किन टाइप वाले लोग इन्हें आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अक्सर जो है ना, जब भी मैं आप लोगों को किसी प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ, तो मेरी एक ये दिली ख्वाहिश होती है कि उस प्रोडक्ट से आप लोगों को बहुत अच्छा जो है ना वो रिजल्ट मिले, बहुत अच्छा आप लोगों के चेहरे पर निखार आए। तो अभी जो है मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बताना जो है ना, ये उन लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भाई अपनी स्किन की वजह से काफी ज्यादा परेशान है, जिनकी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव होती है और वो प्रोडक्ट लगाने से पहले जो है ना वो हजार बार सोच रहे होते हैं।

बोलते बोलते जब हम गाना एंजॉय करने लग जाते हैं ना, क्या बात है। तो जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करेंगे उन लोगों के लिए जो कि भाई आपकी स्किन थोड़ी सी खराब हो जाती है, थोड़े कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो आप ऐसा किया करें कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करने लगे तो आप लोगों को ये चीज बिल्कुल समझ में आनी चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार शुदा है और डॉक्टर से फुल इसका अप्रूवल मिला हुआ है, तभी आपकी जानिब जो है इस प्रोडक्ट को भेजा गया है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर विटामिन ई बीड्स मौजूद है और माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन के साथ ये प्रोडक्ट तैयार किया गया है, यानी कि फुल तमा की जगह ना लगाने का पोई अमीरी वारो एहसास थी, तो तमा वाकई कोई अमीरन वारो प्रोडक्ट लगायो पया। तो इन जी जो क्वालिटी है ढी भली है, जैसे तुम इस्तेमाल कर थिक वी आई पी जो इन फॉर्म है, तुम्हारे स्किन से जैसे डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई वेंदी तो आए हाय तुम्हें ढो मजो अची वो। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है तुम्हारी खूबसूरती के बधाई है, तुम्हारे चेहरे जहा जे डार्क सर्कल्स उसे रिमूव कन्दी डार्क जी भी चीजू आन, यानी कि तुम्हारी स्किन जितियाँ हल्का पेज वाया कारा निशान थी वाया या फिर तुम्हारी जी स्किन है वह बेरोनक लगे थी, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल का पोई तुम्हारी स्किन जो है ना वह सोनी सोनी दिखार भी, तुम्हारे चेहरे जहा जे निशान आया सब खत्म थी वा, तुम्हारी स्किन जहा हल्का खत्म थी वा, तुम्हारी स्किन से निखार अचन शुरू थी वो है। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो विटामिन ई बीड्स माइक्रो बीड्स के मिलाए कर तैयार कई वही है, तो जो पाकिस्तान में डिठो वे ना तो टे चार प्रोडक्ट अड़ा जिनके अंदर विटामिन ई बीड्स शामिल है, विटामिन ई बीड्स तुम्हारी स्किन के ढा जरूरी होंगे है, उनको मतलब उनके अंदर जी प्रॉपर्टीज होंगे वो अड़ी होंगे जो तुम्हारी स्किन के जैसे अंदर वेंदी तो तुम्हारी स्किन के इलाही सारो फायदो पहुंचन है। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर भी विटामिन ई बीड्स मौजूद हैं, तुम इस्तेमाल करो तुम्हें मजो अची वो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम से अगर तुम्हें डी स्किन फेस वॉश भी मिले पो, बिल्कुल जनाब। सो डी स्किन फेस वॉश की अगर मैं गाल क्या तो डी स्किन फेस वॉश जो है तुम्हारी खूबसूरती के लिए है, हर स्किन के मुताबिक तैयार किया वो है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना यो हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया वो है, जो तुम्हारी स्किन के सफा या गोरो बनाई है, हाइड्रेट रखो है, तुम्हारी स्किन हमेशा ग्लो कंदी रही है। सो डी स्किन फेस वॉश से तुम पाजो फेस वॉश कंदा डी में तुम बे टे दफा कर सो रात जो सुमो तो तुम लाजमी पाजो फेस वॉश कर सुमो डी स्किन फेस वॉश से, उन डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है पानी चेहरे से अप्लाई कर, अप्लाई आराम से कर, प्यार से कर, तसली से कर, सुकून से कर, जैसे भी तुम कोई भी प्रोडक्ट राज टाइम खास करी मो इलाही सारा मानू डिठा जिन वेचारे के नॉलेज ना होंगी सब चीजों की, जाहिर तुम्हें अगर कोई बुधाई है तो इन तरीके से बुधाई तो तुम्हें लगन है तो या तो तुम्हें गाल समझ में नहीं दिया या तो इन अटेंशन से बुधाई है तो तुम्हें जो गाल मता में समझ में न अचे, तो अगर मैं यो सोचिंदी तो जे मू जे वेचारा गोठाना जिनके इन चीजों की नॉलेज ना होंगी बस तुम्हें बुधाए भी लगाईंदा मू अस बुधन था उनके इन शय की खबर लाजमी है जरूरी हुजन घुर्जे तो तवाड़ी चीजों सही आन कड़ी चीजों सही ना सो जिन मानून में इन शय की नॉलेज ना है तो उनके बिल्कुल मां कोशिश कन्या तो तवा समझाए सका सही तरीके से, तो तवा पाजी स्किन जो ख्याल रखो तवाजी स्किन जो है वह ढी मतलब खूबसूरत होंगी है, पर तवा कमकार की वजह से उस की वजह से ये थन्द तवाजी स्किन से कुछ अड़ा निशान अची वा दाणा अची वा या कुछ अड़ी चीजों अची वा जी तवाजी स्किन के खराब बना, तो तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम डी स्किन फेस वॉश जो इस्तेमाल कर सको था इनके इस्तेमाल का पोई तुम्हारी खूबसूरती जगह ना तुम्हें वापस मिली वेंदी, तुम सोना सोना प्यारा प्यारा थी वेंदा, तो तुम पांजे गोठन में अवेलेबल करायो, पांजे सिटीज में अवेलेबल करायो, जिते तुम रहो पया उते हर जगह ते ही प्रोडक्ट्स अवेलेबल करायो, ढा जरूरी है, तो तुम बस डायल करो है 03 15 799 059।

अच्छा एसन के दिन टॉपिक ना नको असा नायो लगाइंदा बेंजा प्रोडक्ट अल्लाह जाई बुदा अच्छा सुफियान कहते सिर्फ तेज हवा चली थी चली अच्छी बात है और किशोर भाई कहते मैं समझा तुम्हारा शो लाश है लाश नहीं है बाबा लश है लश लाश मेरा शो नहीं है मेरे को थका थका नहीं पसंद थके थके लोग भी नहीं पसंद थकी थकी बातें भी नहीं पसंद तो इसीलिए हम जिंदा कौम हैं हाँ जी मानो की लगी तो बाबा तहां जिंदा आयो छा ये मरेलन वाली जिंदगी

अच्छा इन गाने की फरमाइश इमरान अली बिरोही भा असा की कई हुई इमरान भा तुम मैसेज जैसे पढ़ा ही गानों तुम नाले अव सही हा साई हा साई डाढ़ो आ मनी व्यासी और नूर सिंह तुनियो भा तुम रात टे बजे असो प्रोग्राम बदंदा बिल्कुल जी बुद्ध जो शौक से बुद्ध जो दर्द दिल कहती है कि नहीं मुझे नींद नहीं आ गई नींद को इजाजत नहीं है और हमारी तरफ तो मिट्टी आई थी हवा के साथ बारिश तो नहीं थी मिट्टी तो खैर हवा के साथ ही आती है बाकी हमारे यहाँ बारिश भी आई थी और उसके अलावा हैं जी ये अकबर अली अकबर बिरोही भाई तुम्हारे मोहब्बत हुआ प्रोग्राम बुध पाया शादी वालों गानों में कोशिश यानी तुम्हें बुधरायू सही आ

गया। अच्छा वासु भाई कहते हैं अदी सिधो जवाब घर वारन जी जेका भी चीज हथ अची वेंदी आए वा इस्तेमाल करे छडींदो आया मुखे कोई भी कुछ भी ना ही चवंदो अल्लाह सिकी लधायो मन सही आ वैसे किशोर भाई अॼु त घुराइण ते बि नदड़ी कोन आई आहे अलाए किथे आहे नदड़ी मुलाई मुजाहिद बोज़दार हमारे साथ हैं वालेकुम अस्सलाम कहते हैं जी जी बिल्कुल ठीक ठाक है काफी दिनों के बाद आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं सो आपको वेलकम इन खुशामदीद कहा जाए

0: क्या बात है, हजार खान जतोई भाई कहते हैं झूठ नहीं बोलूंगा आदिल, व्हाइट एश की लवली क्रीम लगाता हूँ। वाह वाह वाह वाह, झूठ गा रहे हो बिना बाबा।
1: तू तपको तुझे दिल पे पकिया।

मिली चार्जर तव्हां डायल कयो 03-15-799-0595. आदल वो अभी तक हुए नहीं ना, और मुझे लगता भी नहीं कि शायद कभी होंगे.

0: आज किशोर भाई कहते हैं कि हम स्कूल में फेमस नहीं थे, स्कूल हमारी वजह से फेमस था। ऐसे भी बहुत कम बच्चे होते हैं जिनकी वजह से स्कूल फेमस होता है। अच्छा तो ऐसे कहते हैं
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

ओके जी, बहुत ही प्यारा गाना है। इस गाने का मतलब ये है कि हमसे मत पूछो बस दूर रहो और दूर रहो। इसी के साथ साथ जनाब प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तआवन से। तो आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं बताएं तो जरा, पता तो चले। एडा ये मीसना छो थी वया अॼुकल्ह, कुझु बि ॿुधायो नथा, शेयर ई नथा कयो। शेयरिंग इज केयरिंग हूंदी अथव, ॿुधायो मूंखे कहिड़ो प्रोडक्ट लॻायो पियो आहे। उन सां गॾो गॾु अगरि तव्हां ख़ूबसूरती जी तलाश में आहियो, तव्हांजी तलाश ख़तम थी वई आहे, छो त हाणे मार्केट में व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अची विया आहिनि। अगर तुम व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगायो पया तो उनमें तुम व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम मिले थी, व्हाइट एश लवली क्रीम मिले थी, व्हाइट एश ब्यूटी सोप मिले थो, व्हाइट एश फेस वॉश मिले थो, डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब मिले थो। ही सब प्रोडक्ट तुम इजीली लगाए सको था। उनका अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम तुम्हारे लिए मौजूद है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी तुम्हारे लिए तैयार कई वही है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम से अगर तुम डी स्किन फेस वॉश भी मिले पो, सो ही सब प्रोडक्ट तुम इस्तेमाल करो, तुम्हारी खूबसूरती बदंदी और तुम सोना सोना थी वा। सो डायल कयो 03-15-799-0595। अरे भाई, पागलपंती भी जरूरी है जिंदगी में। पागलपंती किया करे।

अशरफ हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम प्यारी दिलबर जानी, आप कैसी हैं? गुड आफ्टरनून। ठीक आप बताएं स्वीटी, आप कैसी हैं? कहती हैं कशफ सिडो असा भी अची वयासी शो में, असाजी हाजिरी जरूर कबूल कवे। जी जी बिल्कुल कबूल आ मुझी सोनी। और कहती हैं असाजी जरूरत आहे या न? बिल्कुल तमाजी जरूरत आहे बाबा, तमा जो प्रोग्राम आ। कहती अज मुझे कजिन जी शादी आ, उनजे लाइ वीआईपी सेरो तो बुधरा सेरो हलायूं था, बिल्कुल हलायूं।

ओके जी मेहंदी सां तो मुझो नालो लिखियो आ पांजे हथ ते डाडो भलो गानो जको तमा बुधो पया उनखा अलावा कश्यप शादी से भी असा चलो ठीक है तमा जे कजिन जी शादी आ उन जिला गानो हलाइंदासी और केरी बाजी ही अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है और ये हमारे साथ है मीरपुर खास से अब्दुल्ला महर वालेकुम अस्सलाम बाजी व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है आए हाय दिल ठारे छिंदा जदी तमा एडी गालियो कंदा आयो उमर कोट से वफा दो दो खान सोलंगी हैं कमाल दीन सोलंगी भी आपके साथ मौजूद है बहुत शुक्रिया दोनों भाइयों को वेलकम करते हैं गोठ धनी बख्श अहमदानी से मंठार अली अहमदानी हमारे साथ है नल्डो बाकीर अली अहमदानी भी हैं जाकिर अली अहमदानी और सदरा मुस्कान अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम और इमरान अली बिरोई भाई कहते बाजी ही वारो गानो तलाइंदा हथ मथे क्या सी डाडो आ हली वियो हली वियो और है जी बाजी टॉपिक का जवाब है जी एक दिन में अपनी आपी जान की टूथ पेस्ट को चुराया था लगाया था क्या किया था बताएं जरा लगाने की बात और चुराने की बात थोड़ी सी जरा समझ नहीं आती और कश्यप कहती है सिडो हमारे पास रात बहुत तूफान बारिश हुई थी सकरंड में अच्छा जी अच्छा चलिए अच्छी बात है एंजॉय करे बेचारा खालिद आप हमारे साथ मौजूद है चाचा तवाजो मोहब्बत एडा सारा पैनल से मैसेज करे सजा अव तवाजो गानों बिल्कुल हलाइंदी तीन सीट से वेठा हो छे भी न वनो अगर मेहंदी सा नालो लिखण वारो यो जो को सीना है मुके समझ में ना इंदो यो छाए मतलब केड़ी जरा बता और ये जी कश्यप कहती है कि सिडो आप मेरे एसएमएस सही से रीड नहीं करती हैं कोई नाराजगी है क्या भला आपकी मुझसे तो बताएं जरा नहीं नहीं नहीं नाराजगी भला कैसी हो सकती है और नाराज में तो परियों से बिल्कुल भी नहीं होती और ये हम यहाँ पर गाना सुनेंगे जी सहरो सहरो आहे ॾाढो भलो हिन गाने खे ॿुधंदासीं जेको असां कश्यप जे कज़न खे डेडिकेट कंदासीं उन जी शादी आहे छो त शादी जो घर आ शादी थे पई तो तवा के इस्तेमाल करना पंदा जना वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स तवा वनो मार्केट अगर खरीदारी करना तो वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स वठी जो एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जरूर वठी जो ठीक है कश्यप।

अच्छा हमारे साथ मौजूद है फजीला सिंधी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम स्वीटी प्यारी, आपको वेलकम करते हैं। सलाम से हमारे स्वीट हार्ट मॉम एंड कायनात और सब सुनने वाली लड़कियों को। टॉपिक नहीं, मैं किसी और की यूज नहीं करती कोई भी चीज। एरा दुनिया में घट मानू होता जो की कैसी चीज यूज ना करना ये चीज है। तो चाहता चूलिस

ओके जी, इरम भी असांजो प्रोग्राम ॿुधे पई. आप ही कल रात को कंफर्ट सिटी में भी बारिश एंड तूफान हुआ था. वाह वाह, सोनी हमारे साथ ही थी. आप ही जान में वापस आ गई. आप ही रात को वापस आई थी हम सब. हाँ जी बिल्कुल, रात बारिश हुई थी और पता नहीं कब तक हुई थी. और आपको वेलकम करते हैं सोनी. साइमा मीर हमारे साथ ही. वालेकुम अस्सलाम साइमा मीर. माशाल्लाह मक्खन जैसी आरजे सिद्रो, कैसी हो? व्हाइट एश ब्यूटी शो मस्त है. वजह यू एंड दसो लाड़काना में कब हुई थी बारिश? अब टाइम तो मुझे नहीं पता क्योंकि रात वाली बारिश नहीं पसंद आई, इसीलिए इसे नोट नहीं की जाती. और कहती है कि आधी रात आज बारिश हो रही थी, हम सो गए थे. वो माड़ी तो देखा रहे हो, जे में कुंवर बैठी आ.

अच्छा सहमा कहती है मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया, अपने पैसों से अपनी चीजें यूज करो प्यारी प्लीज, लास्ट में सुंदरी वाला ओएसटी लगाना, सुंदरी वाला ओएसटी लगाऊं, वो चाचे वाला गाना था लास्ट में उसको रिप्लेस कर दूंगी तो चाचा जो है वो गुस्सा हो जाएंगे। और माहीन हमारे साथ है, माहीन बलोच आप कैसी हैं माहीन, ठीक ठाक है मजे में, और माहीन को वेलकम किया जाता है शोने के लिए। आप प्लीज आतिफ का वो वाला सॉन्ग प्ले कीजिएगा, सुबह हलाइंदा से शोनी अज तुम थोड़ा देर करी आया।

बिल्कुल जी बिल्कुल तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो पिया। डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे एरिया में अवेलेबल आहे। डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां नालो वठी करे परचेज कयो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे स्किन खे सफ़ा वी आई पी गोरो चिटो बणाए छॾींदी। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾु तव्हांखे डी स्किन फेस वॉश मिली पियो, जेको तव्हां आराम सां लॻाए सघो था। ॾींहं में लॻायो 3-4 दफ़ा जेतिरो तव्हांजो दिलि चवे। पोइ हुन खां पोइ जेको आहे राति जे टाइम तव्हां जंहिं महिल सुम्हो त तव्हां पंहिंजो फेस वॉश कयो डी स्किन फेस वॉश सां। हुन खां पोइ तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम पंहिंजे चहिरे ते अप्लाई कयो, जीअं तव्हांखे ख़ूबसूरती मिले सफ़ा भली। ऐं हिकिड़ी मज़े जी ॻाल्हि त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका अथव इहे सिर्फ़ 2 रातियूं तव्हां लॻाईंदा, तव्हांखे भलो रिज़ल्ट मिली वेंदो। सो तव्हां जल्दी लॻायो, जीअं सुहिणा सुहिणा थी वञे। अच्छा मोलाई मुजाहिद बोजार के दे टॉपिक है जवाब चोरी करना बुरी बात है सिद्रो जी। मैंने कब कहा कि आप चोरी करें? और कहते मेरे साथ आपका शो सुन रहा है लाहुती साथी चांडियो। ओके आप दोनों को वेलकम करते हैं।

अच्छा जी, चाचा खालिद कहते हैं मिले तो लगायो नी वाइट एज लवली क्रीम नथी मिले अन्या ताई ता वट ता के जको नंबर बुदा दने राप्तो कयो ना बाबा राप्तो कना ता पोई ता मिलंदी नी अगर जिते जिते अवेलेबल ना है तो नन मानो चलाए सबनी चलाए या आई गुजारिश मुजी तो बाबा तमाने नंबर ते राप्तो करी वठो राप्तो करन का पोनन के बुधायो ता किथे किथे जरूरत आए वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जी दी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जी हु अवेलेबल करा सकन उनन की केड़ी खबर ते किथे किथे नथा मिलन अन्या ताई।

फर्स्ट लिंक सबसे कुछ जो थोड़ा बड़ा लगता है मुझे ऐसा क्यों भला भागन जी गाल आहे तुझा नथी सग्यासी।

भाउ घणी अॼु जना गाना रहिजी विया न प्रोग्राम में त उहे गाना मां सुभाणे अची तव्हां जा हलाईंदमि ठीकु आहे तव्हां नाराज़ न थीजो मूंखां और छोनी कहती आपी वैसे कराची की मौसम बहुत प्यारी थी आपी बहुत ज्यादा इंजॉय किया और चले माशाल्लाह अच्छी बात है इंजॉय करिए जिंदगी को और सायमा कहती है हाथ पे मेहंदी से नेम बताओ सही गलत है या मेरे ख्याल से गलत है ठीक है चाचा जो गाना बिल्कुल है तो वैसे मेहंदी से नालो जो ना मुझे थोड़ा अजीब लगता ओल्ड फैशन लगता ओल्ड फैशन असा ठहरियासी बाबा जेंजी बार जेंजी जी के ना कुछ अलग करने की कोशिश करना है समझो तो यो हाने पुरानो ट्रेंड थी वयो को नो ट्रेंड गोली नासी हाने तो छा करण गुर्जी असा के

0: ॾिसो अॼु जेको टाइम आहे प्रोग्राम जो सफ़ा ख़तम थी वियो आहे, बाक़ी हा जंहिंजा गाना अॼु हलिया आहिनि सुभाणे लाज़मी तव्हांजा गाना ॻाईंदा, बसि थोरो मूंखे यादि ॾियारींदा कयो, ठीकु आहे? ऐं ॿियो छा, ॿियो बसि वेंदे वेंदे चवंदी वेंदमि तव्हांखे त तव्हां वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु लाज़मी कजो, अगरि नथा मिलनि त तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते लाज़मी अवेलेबल करायो, तव्हांखे आसानी थी वञे। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम बि तव्हां लॻायो जेका तव्हांजी ख़ूबसूरती खे वधाईंदी, डॉक्टर्स खां मशवरो वठी करे तव्हांजे लाइ तयारु कई वई आहे, एॾी महिनत सां एॾे प्यारे सां तव्हांजे लाइ प्रोडक्ट ठाहिया अथमि, सो तव्हां लाज़मी हिननि खे इस्तेमालु कजो, तव्हांजी ख़ूबसूरती वधंदी ऐं तव्हांजी
1: ख़ूबसूरती। अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में मिटीअ जे तूफ़ान ऐं बरसाति सबबि तबाही मुख़्तलिफ़ वाक़िअनि हादसनि में 16 ॼणा फौत 50 खां वधीक ज़ख़्मी काज़ी अहमद ऐं भरपासे भितियूं ऐं छपरा किरण सबबि ॿिनि औरतुनि समेत 5 ॼणा हयाती विञाए वेठा 10 खां वधीक ज़ख़्मी थिया पोतनि में उमेर चनेसर महर मुसमात राणी अफ़ज़ल फली ऐं हिकु औरत शामिल नवाबशाह ऐं भरपासे तूफ़ानी बरसाति सबबि वण ऐं भितियूं किरण जे नतीजे में ॿिनि औरतुनि समेत 5 ॼणा फौत 20 ज़ख़्मी पोतनि में अब्दुल मजीद मोहम्मद हमीर महर असलम पहर मुसमात खातून ऐं मुसमात लाल खातून शामिल मोरो ऐं भरपासे तूफ़ान सबबि सोलर प्लेट्स ऐं साइन बोर्ड किरण जे नतीजे में हिकु औरत समेत 2 ॼणा फौत थिया 5 खां वधीक ज़ख़्मी खारुशाह भर सां भोटी में तेज़ तूफ़ान सबबि घर जी भिति किरण जे नतीजे में फातिमा पहर दॿिजी फौत थी वई मेहर ऐं केन शाह में सोलर प्लेट्स ऐं भितियूं किरण वारनि वाकियनि में 2 ॼणा फौत ऐं 8 ॼणा ज़ख़्मी थिया राधन वेझो ॻोठ बालिशाह में भिति किरण ऐं सोलर प्लेट किरण सबबि 1 ॼणो फौत थियो 2 ॼणा ज़ख़्मी थिया नौशहरो फेरो ज़िले में तूफ़ान सबबि अंबनि जे बाग़नि खे वॾो नुक़सान पहुतो।

तेज़ तूफान ऐं बरसातुनि बाद लारकाणो समेत मुख़्तलिफ़ ज़िलनि जी बंदि थियल बिजली अञा बहाल न थी। सख़्त गर्मीअ सबबि रहवासी परेशाननि खे मोरण लॻा। सेप्को बंदि थियल 46 ग्रिड स्टेशन मां 27 खे बहाल करण जी दावा करे छॾी। सेप्को चीफ चयो आहे त बिजली फराहम कंदड़ टावर किरण सबबि ग्रिड स्टेशन बंदि थियूं आहिनि। बंदि थियल 46 ग्रिड स्टेशन मां 27 खे बहाल कयो आहे। ॿियनि जी बहालीअ जो कम जारी आहे। बिजली जी मुकमल बहालीअ में 72 कलाक लॻी सघनि था। अमेरिका ऐं ईरान जा हिकु भेरो ॿीहर हिकु ॿिए ते मिज़ाइल ऐं ड्रोन हमला। ॿिन्ही मुल्कनि जा हिकु ॿिए ते अगराई ऐं जंगबंदी मुआदे जी भञकड़ी करण जा इल्ज़ाम। ईरानी बाज़ार ऐं इनकलाब जी कुवैत ऐं बहरैन में अमेरिकी फ़ौजी अॾनि ऐं सामूंडी जहाज़नि खे निशानो बणाइण जी दावा। बाज़ार ऐं इनकलाब चयो आहे त आबना हरमूज़ में ईरानी ऑयल टैंकर ते हमले जे जवाब में कार्रवाई कई। अमेरिका जी फिफ्थ फ्लीट हेडक्वार्टर्स ऐं एयर बेसिस खे निशानो बणायो। ईंदड़ जवाब वधीक सख़्त हूंदो। अमेरिकी सेंटकॉम चयो आहे त ईरान जा बैलिस्टिक मिज़ाइल ऐं ड्रोन हमला नाकाम बणाया विया आहिनि। जवाबी कार्रवाई कंदे ईरानी कशम बेट में फ़ौजी ठिकाणनि खे निशानो बणायो। ईरानी मिज़ाइल निशाने ते नाहिनि लॻा। कुवैत ते फायर कयल 2 मिज़ाइल रस्ते में ई किरी पिया। बहरैन मथां फायर कयल 3 मिज़ाइल अमेरिकी ऐं बहरैनी फ़ौज खे रहिया। अमेरिकी बहरी जहाज़नि ते 3 ड्रोन हमला नाकाम बणाया विया।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: करें।
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामराई के गालन में शामिल होने की तस्दीक कर छी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू साबिक कावड़ में गालने जो एतराफ़। पॉडकास्ट इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप चवाए आयतुल्ला खामराई अमेरिका से गालन में शामिल है। शायद कें वक्त ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात क्या ईरान तकरार खत्म तो तेल जो कीमतों भी घटी वेंदी। ईरान में इन वक्त जमीनी फौज मोकलने की जरूरत ना है। नेतन्याहू जी लबनान से लगातार हमलन सबब परेशान हुयस जै सबब नेतन्याहू से कावड़ में गाले हो। ईरान से गाल खत्म थियण वाली खबरू गलत गुमराह कदड़ ईरान से माहदे तक पहुंचने जो वक्त अची वो है।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हा, 3135525786।
2: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अपना शहर अपना घर और मातली की आवाज GFM 90.4।
1: करो छो।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

के हो तो आवाज भी सिर की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी जी वफाक में इत्तेहाद जमात नून लीग से तनकीद दयामीर बादशाह डैम की तामीर जल्द शुरू करे रथा मुकम्मल करने जो मुतालबो। दयामीर में चूंड जलसे के खिताब कदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी चयो तो भारत में मोदी हुकूमत पानी के दहशतगर्दी तौर इस्तेमाल कर रही है। बादशाह डैम पाकिस्तान की सब का वही जरूरत है। वजीर आजम के चवे तो बादशाह डैम लाइ शाहबाज स्पीड डेखारे। डैम मनसूबो जल्द मुकम्मल करे पहिरीं बादशाह डैम तामीर कयो वञे पोइ कंहिं ॿिए मनसूबे जे सिर रखी वञे। सदर ज़रदारी जी हुकूमत साज़िश करे ख़तम न कई वञे हा त बादशाह डैम ठही वञे हा। जेकॾहिं सदर ज़रदारी सी पैक न आणे हा त तव्हां ओरेंज ट्रेन किथां आणियो हा। हिकु क़ैदी 420 चवे थो त हुन एब्सोल्युटली नॉट चयो। ॿुधाए त सही तो छा खां इनकार कयो। मुशरफ जी हुकूमत बाद मर्द हुर जी हुकूमत आई जंहिं हिकु लत सां समूरा फ़ौजी अॾा बंदि कया ऐं महिमाननि खे ख़ुदाफ़िज़ चयो। फ़ौजी अॾनि जी बंदिश बि पीपुल्स पार्टीअ जी हुकूमत जो कारनामो आहे। वफ़ाकी बजेट ते इख़्तिलाफ़नि जी ख़ात्मे लाइ हुकूमत जूं कोशिशूं तेज़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जी अॻुवाणीअ में हुकूमती वफ़द जी पीपुल्स पार्टी जी वफ़द सां मुलाकात। नाणे वारो वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब बिलाल अज़र कयानी शरीक। पीपुल्स पार्टी वफ़द में नवीद कमर शेरी रहमान ऐं वॾो वज़ीर मुराद अली शाह शामिल। BISP समेत बजेट ते ॻाल्हियूं।

अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली खामनाई की अमरीका से गालियन में शामिल होने की तस्दीक कर छी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से बिकावट में गाल जो इतराफ। डोनाल्ड ट्रंप तो शायद कें वक्त ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात भी क्या। तेहरान से एटमी हथियार न रखने से इतफाक है। ईरान तकरार खत्म तो तेल जो कीमतों भी घटी वो। ईरान में इन वक्त जमीनी फौज मोकलने की जरूरत ना है। नेतन्याहू की लिबनान से लगातार हमल सब परेशान हुस जै सबब नेतन्याहू से कावड़ में गालो हो। ईरान से गाल खत्म थे वाल खबरू गलत गुमराह कदड़। ईरान से मुआदे तक पहुंचने वक्त अची वो है।

अमरीका ऐं ईरान जा हिकु भेरो ॿीहर हिकु ॿिए ते मिज़ाइल ऐं ड्रोन हमला, ॿिन्ही मुल्कनि जा हिकु ॿिए ते अगराई ऐं जंगबंदी मुआदे जी भञकड़ी करण जा ॿिनि सां पासदारान इनकलाब जी कोयत ऐं बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अॾनि ऐं सामूंडी जहाज़नि खे निशानो बणाइण जी दावा। पासदारान इनकलाब चयो आहे त अमराए हुर्मुज़ में ईरानी ऑयल टैंकर ते हमले जे जवाब में कार्रवाई कई। अमरीका जी फिफ्थ फ्लेट हेडक्वार्टर ऐं एयर बेसिस खे बि निशानो बणायो वियो। ईंदड़ जवाब वधीक सख़्तु हूंदो। अमरीकी सेंटकॉम चयो आहे त ईरान जा बैलिस्टिक मिज़ाइल ऐं ड्रोन हमला नाकाम बणाया विया आहिनि। जवाबी कार्रवाई कंदे ईरानी कशम बेट में फ़ौजी ठिकाणनि खे बि निशानो बणायो वियो। ईरानी मिज़ाइल निशाने ते नाहिन लॻा। कोए ते फायर कयल ॿ मिज़ाइल रस्ते में ई किरी पिया। बहरीन मथां फायर कयल टे मिज़ाइल अमरीकी ऐं बहरीनी फ़ौज किराया। अमरीकी बहरी जहाज़नि ते

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सुबह में यही ये किया वो किया। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपने जो भी किया वो सिर्फ और सिर्फ सदर सरदारी की वजह से। अगर उन्होंने कोई मेट्रो शेट्रो बनाए, किसी एक शहर में कोई ट्रेन शेन चलाया, तो वो इसलिए कि सदर जरदारी की 18वीं तरमीम की वजह से, सदर जरदारी की एनएससी अवार्ड की वजह से आपको ये मसाइल मिले कि आप ये तरक्याती मंसूबे करवा सकते थे। बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने ये किया वो किया। अगर सदर जरदारी सी पैक नहीं लेकर आता तो तू कहां से ये ऑरेंज ट्रेन बना के दरवा देते अपना शहर को? तान के लिए कोई और मंसूबा इतना अहमियत नहीं रखता जितना ये जामर बादशाह डैम का मंसूबा रखता है। आपसे वादा करना चाहता हूं कि इंशाल्लाह ताला 7 जून के बाद पीपुल्स पार्टी की हुकूमत बन रही है और हम ये काम पूरा कर देंगे। तो फिर वो कैदी कह सकता था कि एब्सोल्युटली नॉट, हमने तो बंद कर दिए थे वो बेसिस, किस चीज का एब्सोल्युटली नॉट।
1: पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जी वफाक में इत्तेहादी जमात नून लीग ते तनकीद, दयामीर बादशाह डैम की तामीर जल्द शुरू कर रिथा मुकम्मल करने जो मुतालबो। दयामीर में चूंड जलसे के खिताब कंदे पीपी चेयरमैन चयो तो भारत में मोदी हुकूमत पानी के दहशतगर्दी तौर इस्तेमाल कर रही है। बादशाह डैम पाकिस्तान की सब का वही जरूरत है। वजीर आजम के चवे तो बादशाह डैम लाए शाहबाज स्पीड डेखारे, डैम मनसूबो जल्द मुकम्मल करे। पहरी बादशाह डैम तामीर कर वे कें बे मनसूबे की सिर रखी वे। सदर जरदारी की हुकूमत साजिश कर खत्म न कई वे हा तो बादशाह डैम भी ठही वे हा। जैसे सदर जरदारी सी पेक न आने हा तो तवा ऑरेंज ट्रेन किथा आणो हा? एक कैदी 420 चवे तो एब्सोल्युटली नॉट चयो, बुधाये तो सही तो इनकार कर। मुशरफ की हुकूमत बाद मर्द होर की हुकूमत आई जै एक लत से समूरा फौजी अड्डा बंद कया ए मेहमान के खुदाफिस। आसफा भुट्टो जरदारी चयो तो पीपुल्स पार्टी कामयाब थियण बाद गिलगित बल्तिस्तान के सब सहूलतू फराम कंदी। वफाकी बजट ते इख्तिलाफन की खात्मे लाए हुकूमत जो कोशिश तेज, नायब वजीर आजम इसहाक डार की अगवाणी में हुकूमती वफद की पीपल्स पार्टी वफद से मुलाकात। नाने वारो वजीर मोहम्मद औरंगजेब, बिलाल अजहर कियानी शरीक। पीपुल्स पार्टी वफद में नवीद कमर, शेरी रहमान ए वडो वजीर मुराद अली शाह शामिल। बीआईएसपी समेत बजट ते गालियों, हुकूमती ज़िलन जो चवण है तो बजट ते पीपुल्स पार्टी सिलसिलो जारी है। पीपुल्स पार्टी समेत इतिहादन जा बजट ते अच्छा खत्म कया वेंदा, गर्जाणन जो सिलसिलो भी जारी रहंदो। नए माली साल की बजट बिलावल भुट्टो की गिलगित में वापसी ते पेश की वेंदी। वफाकी हुकूमत नए माली साल की बजट में मिर्तन की खरीद ए विक्रे ते टैक्स घटाने की तजवीज तैयार कर वरती। जरिन मौजिब वफाकी हुकूमत तामीराती शोबे के हथी वठण लाए मुतहरक मिल्कियतन ते टैक्स की शरह 1.5% में घटाए 2.25% करने की तजवीज तैयार की है। गैर मुतहरक मिल्कियतुन ते भी टैक्स 4.5% में घटाए 1.5% रखने की तजवीज शामिल। मामले ते आईएमएफ से भी मुशावरत जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली खामनाई की अमरीका से गालियों में शामिल होने की तस्दीक कर छी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू सांबे कावड़ में गायण एतराफ़। डोनाल्ड ट्रंप शायद कें वक्त मुश्तबा खामनाई से मुलाकात भी कया। तहरान से एटमी हथियार न रखने से इतफाक है। ईरान तकरार खत्म तो तेल जो कीमतों भी घटी वेंद। ईरान में इन वक्त जमीनी फौज मोकलन की जरूरत ना। नेतन्याहू की लबनान से लगातार हमलन सब परेशान हुस, जै सबब नेतन्याहू से कावड़ में गलायो हो। ईरान से गालू खत्म थियण वालू खबरू गलत ए गुमराह कदड़।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोइ जीए एफएम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफएम रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं

0: रेडियो जी एफ ए मातली बदीन
1: बस पो हाने खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असां जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 0331252576।
0: जी हां, 2315525786।
1: जी एफ एम रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सेवा।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

पाक थी वियो आहे। ईरान तकरार खत्म थींदो त तेल जूं क़ीमतूं बि घटिजी वेंदियूं। ईरान में हिन वक़्तु ज़मीनी फ़ौज मोकिलण जी ज़रूरत न आहे। नेतन्याहू जी लबनान ते लगातार हमलनि सबबि परेशान हुयुसि, जंहिं सबबि नेतन्याहू सां कावड़ में ॻाल्हायो हो। ईरान सां ॻाल्हियूं ख़तम थियण वारियूं ख़बरूं ग़लति आहिनि। मुआदे जो वक़्तु अची वियो आहे। ईरान ऐं अमरीका जी हिक ॿिए ते हमलनि बाद सफारती कोशिशूं तेज़। ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास अराकची जा पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, मिस्र ऐं फ्रांस जे अॻवाननि सां राब्ता। ईरानी परडेही वज़ारत मूजिबि अब्बास अराकची पाकिस्तान जे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ऐं ॿियनि मुल्कनि जे क़यादत सां सूरतयाल ते ॻाल्हि ॿोल कई आहे।

अमरीका ऐं ईरान जा हिकु भेरो ॿीहर हिकु ॿिए ते मिज़ाइल ऐं ड्रोन हमला, ॿिन्ही मुल्कनि जा हिकु ॿिए ते अगराई ऐं जंगबंदी मुआहिदे जी भञकड़ी जा बि इल्ज़ाम। पासदारान इनकलाब जी कोएत ऐं बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अॾनि ऐं सामूंडी जहाज़नि खे निशानो बणाइण जी दावा। पासदारान इनकलाब चयो आहे त अबनाए हुर्मुज़ में ईरानी ऑयल टैंकर ते हमले जे जवाब में कार्रवाई कई। अमरीका जी फिफ्थ फ्लेट हेडक्वार्टर ऐं एयर बेसिस खे निशानो बणायो वियो। ईंदड़ जवाब वधीक सख़्त हूंदो। अमरीकी सेंटकॉम चयो आहे त ईरान जा बैलिस्टिक मिज़ाइल ऐं ड्रोन हमला नाकाम बणाया विया आहिनि। जवाबी कार्रवाई कंदे ईरानी कशम बेट में फ़ौजी ठिकाननि खे निशानो बणायो। ईरानी मिज़ाइल निशाने ते नाहिन लॻा। कुवैत ते फायर कयल ॿ मिज़ाइल रस्ते में ई किरी पिया। बहरीन मथां फायर कयल टे मिज़ाइल अमरीकी ऐं बहरीनी फ़ौज किराया। अमरीकी बहरी जहाज़नि ते टे ड्रोन हमला नाकाम बणाया विया। कुवैत जे मुल्की हदनि में 13 ईरानी मिज़ाइल ऐं 17 ड्रोन तबाह करण जी दावा। हमलनि बाद कुवैत जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंदि। हिकु ॼणो मारिजी वियो, 63 ज़ख़्मी। मारिजी वियल शख़्स जी सुञाणप भारतीय शहरी तौर कई वई। कुवैती परॾेही वज़ारत हमलनि जी मज़म्मत कंदे चयो आहे त इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐं सिविल आबादीअ खे निशानो बणायो वियो। कुवैत में मुक़रर ईरानी सफ़ीर जी कुवैती परॾेही आफ़िस तलबी। एहतजाजनि ख़त ॾियण सां गॾु ॿिनि सफ़ारतकारनि खे बि नापसंदीदा क़रार ॾेई वापसि वञण जो चयो वियो।

0: मेट्रो शेट्रो बनाए, किसी एक शहर में कोई ट्रेन शेन चलाया, तो वो इसलिए कि सदर जरदारी की 18वीं तरमीम की वजह से, सदर जरदारी की एनएफसी अवार्ड की वजह से आपको ये मसाइल मिले कि आप ये तरक्याती मंसूबे करवा सकते थे। बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने ये किया वो किया। अगर सदर जरदारी सी पैक नहीं लेकर आता तो तू कहां से ये ऑरेंज ट्रेन बना के दरवाजे पे अपना शहर को तान के लिए कोई और मंसूबा इतना अहमियत नहीं रखता जितना ये जामिर बादशाह डैम का मंसूबा रखता है। आपसे वादा करना चाहता हूं कि इंशाल्लाह ताला 7 जून के बाद पीपुल्स पार्टी की हुकूमत बन रही है और हम ये काम पूरा कर देंगे। तो फिर वो कैदी कह सकता था कि एब्सोल्युटली नॉट, हमने तो बंद कर दिए थे वो बेसिस, किस चीज का एब्सोल्युटली नॉट।
1: पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की वफाक में इतिहादी जमात नून लीग ते तनकीद, दयामीर बादशाह डैम की तामीर जल्द शुरू कर रिथा मुकम्मल करण जो मुतालबो। दयामीर में चूंड जलसे के खिताब कंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो तो भारत में मोदी हुकूमत पानी के दहशतगर्दी तौर इस्तेमाल कर रही है। बादशाह डैम पाकिस्तान की जरूरत है, वजीर आजम बादशाह डैम लाए शहबाज स्पीड डेखारे, डैम मनसूबो जल्द मुकम्मल करे, पेरी बादशाह डैम तामीर कर वे कें बे मनसूबे की सिर रखी वे।
2: Nissan Sobrang init, but with Food Panda, a world of flavor awaits you. Make life delicious.
3: Food Panda.
1: इनकार कयो हो मुशरफ जी हुकूमत बाद मर्द होर जी हुकूमत आई जै एक लत सा समूरा फौजी अदा बंद कया ए मेहमानन के खुदा हाफिज़ चयो। आसपा भुट्टो चयो तो पीपुल्स पार्टी कामयाब थियण बाद गिलगित बल्तिस्तान के सब सहूलतूं फराहम कंदी।

0: वफाकी बजट ऐं कानून साज़ी वारे मामले ते पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जी ॿी गॾिजाणी बि बिना नतीजे ख़तम। बजट ऐं कानून साज़ी ते पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग में इख़्तिलाफ़ बरक़रार। ॿिन्ही पार्टियुनि जो मामिलो सीनियर क़यादत आॾो रखण ऐं मुलाक़ात जी तजवीज़। ॾींहं ॿिनि में हुकूमत ऐं पीपल्स पार्टीअ जी सीनियर क़यादत विच में मुलाक़ात थियण जो बि इम्कान। अॼोकी गॾिजाणी में लीगी वफ़द जी क़यादत नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कई। नाणे वारो वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब, बिलाल अज़हर कयानी बि गॾिजाणी में शरीक हो।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: Thanks for watching this video. For more updates, subscribe Shehla Gul Official.
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज। खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।